0: कि एक समय तमाम जो बाहर जो माता से रिता थी फल नो नियो बोले अफेट जो रहता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती ने पिसल
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ये कृष्ण तमो बने दे बाहु जो माता से रहित थीं पर नौ न्यू बोले अफेयर तक हुआ था साउदी बाकुम्बा से नौ पूजा बत्तीन बिसन
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.